0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा सरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चल्छौ।
3: ग्लोबल आइडी बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिस होम इन्टरनेट।

0: alles in der Deine. Geh away, Arthur. Geh away. हमने साथ ही का साफ काट ली.
1: कहाँ हो गया बहनी? आप कहे चिल्लावा जाते हैं? अरे ये भुइया में क्यों है?
0: सुना जाए ना भैया, हमरे दोनों जनी घास काटे आ रहे हैं, हमरे साथी का सांप काट ली. अब कहा कर रहे? एक जल्दी उपचार केंद्र पहुँचाए मिलत तो ठीक रहा.
1: ओहो, ऐसा समय पर एम्बुलेंस और चार चक्का गाड़ी खोज के अगोर के नहीं बैठे चाहिए. एहन अक्चरवे के गांव में हमारे एक जने मोटरसाइकिल भवा साथी है. फोन करी थे हम, आप न घबरावा जाए, साथी का ध्यान दिया जाए. हेलो मुकेश, तू तुरंत मोटरसाइकिल लेके यहाँ आओ तो, यहाँ एक जनी बहनी का सांप काट ली है, इमरजेंसी हो गया, तुरंत उपचार केंद्र ले जाक पड़ा. राजमार्ग चौराहा से 100 मीटर पच्छू बायोवर हन हमरे. मुकेश जल्दी आओ ना सब काम छोड़ के.
2: होते संतोष, हम मोटरसाइकिल लेके चले आए.
1: सुना जाए बहनी, सांप काट लिया व्यक्ति का जितना हो सके उतना जल्दी एंटी वेनम उपलब्ध रहा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाक चाहिए. ऐसे समय पर जल्दी होने वाला यातायात के साधन छनौट करे के चाहिए. यदि मोटरसाइकिल की व्यवस्था है तो अपने और सवारी चालक के बीच में सांप काट लिए व्यक्ति का सुरक्षित हुए के मेर से तुरंत उपचार केंद्र पहुँचावे के चाहिए. वो देखो मुकेश मोटरसाइकिल लेके आएगा, हमारे विश्वसनीय साथी है. हम तुरंत बीमरिया का अपने और मुकेश के बीच में रख के मोटरसाइकिल से उपचार केंद्र पहुँचाए थे. आप हमारे साइकिल लेके वहरे आवागे.
0: हो थे भैया, बहुत ही सहयोग करा गई. चला जाए, जल्दी चला जाए.
3: याद रखा जाए, सांप के डसे के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्वतंत्र उपचार केंद्र जाए के जान बचावा जाए.
4: यदि समय पर उपचार कई मिले पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाए सका जाता है और इनसे होए वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है. सांप डस लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ये वह व्यक्ति के जीवन बचाव एक बहुत मदद करत है.
1: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहीं के पता लगावे, आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है.
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश.

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को देव स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन

0: मिल्दैछ कि ब्रो?
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
0: राम्रोसँग ल गाइदिए, म चाहिँ

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।